0: On the other side of the country, we're in eastern Uttar Pradesh, home to some of India's poorest communities. Most families here depend on agriculture and manual labour jobs just to get by. But wedding season is in full swing here too. Vaishali Prajapati is 24 years old. Even on the eve of her wedding, she can't get away from the housework.
1: So, लोग जैसे जिसके पास बजट के हिसाब से बहुत बड़े से करता है, तो मेरा ज़्यादा बजट है नहीं। तो जितना हम लोग को हो सकता है अपना इसी तरह अपने कम बेसी में जैसे कर ले रहे हैं।
0: Vaishali had a tough childhood. Her parents died when she was young, and she worked as a domestic helper to make ends meet.
1: मिर्चा लगे तो ज़्यादा हो गल नानी ना।
0: Still, she completed an arts degree. 4 years ago, she met her fiancé Sunny at work, and they fell in love.
1: ये भेजे थे कौन अच्छा लग रहा है? वो बोले कि ऐसा करते दादी दी से पूछ लो तो हम लोग का मन था घर के बड़े बोलेंगे तभी शादी होगा नहीं.
0: Both families agreed to the match, but it put Vaishali under pressure.
1: आजकल जैसे कि एक जैसे कम फैमिली के लिए जैसे कि जिसके पास ज़्यादा मनी नहीं है फिर भी जैसे सिकड़ी अंगूठी गाड़ी भले चलाने ना है लेकिन चाहिए ये सब सारा चीज़
2: पैसा रहा तो तने मैडम जी तो हम तास ब्याह करी इतने
0: Vaishali's grandmother is 80 years old and still working. She earns about a dollar a day making these clay piggy banks. She's already borrowed more than $5,600 for the weddings of her two other granddaughters. Now, she's borrowed another $4,200 for Vaishali.
3: जो खर्चा है जो आपने 1 लाख लिया है उसको आप क्या करेंगी?
2: दामाद जी को सिकड़ी बनवाए हैं, दामाद जी को अंगूठी बनवाए हैं, हंडा परात लोटा गगरा दुनिया का जो रितवाऊ लिया हैं।
3: उन्होंने मांगा है कि आप दे रहे हैं?
2: दे रहे हैं
3: उन्होंने मांगा नहीं है तो जब आपके पास इतना नहीं है तो आप उधार लेके क्यों उनको दे रहे
2: तो इज्जत के लिए अपने की इज्जत बनी रहे
3: अगर आप नहीं देंगे तो इज्जत नहीं रहती
2: कैसे इज्जत रही दुनिया का कही अरे दू जने के देने हमके ना मिलल वैशाली कहीं के सबके देली माई हमके ना देने
0: Despite the financial pressure, Vaishali's excited. I join her family at a pre-wedding ritual called the Haldi for prosperity and protection from evil. She's not draped in gold, but marigolds.